0: सच कह जे हुंदा।
1: चुल्ले ते पकदी रोटी सच्चे,
2: मिट्टी चुगदी फसल सच्चे,
1: खुरो दी पानी सच्चे, सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

0: हाँ कल लिस्ट तो नहीं आ सकिया कि डॉक्टर दलबीर कथूरिया साहब को कल चले गए। वो फिर बाबा जी भी उत्थे नहीं सन ते वो छोटे भाई भी उन्होंने नहीं सन
1: अच्छा, इन्हां नूं फिर जिम्मेवारी संभालनी
0: ते
1: पई ना
0: इन्हां नूं
1: कल।
0: जिम्मेदारी संभालनी पई ते वो फिर आंदे चल यार हुण बैठे हां ते चलो गपशप लगदी रहे ते फिर मैं डॉक्टर साहब को उत्थे बैठा रहा। इस वास्ते मैं कल नहीं टाइम से आ सकिया।
1: जी
0: बाकी मैं हाजिर
1: आन दो फिर।
0: औखे पिंड लम्मिया ने रवा इश्क दिया।

0: और 5353 5353। सुनो एक प्यारा जहा गीत, बहुत वधिया तुसी पसंद करोगे, ते फिर आपां तुहाडी कॉल ते गलबात अगे करदे आं।
1: मिर्चे जट दियां कहानियां तोड़न तो बाद साहिबा जट्टी दे मन विच

0: So 416-817-6500. G, welcome.
1: थैंक यू सो मच नवी. पहला तुहानू ते सारे ही लिसनर्स नू प्यार प्यार सत श्री अकाल. ते अज असीं गल करांगे लिविंग बेनीफिट्स के उपर, जिथे आपां लाइफ इंश्योरेंस की इंपोर्टेंस की गल हमेशा करते रहने हैं कि साडी जान तो बाद साडियां फैमिलीज की प्रोटेक्शन के लिए सानू अपनी कवरेज करवानी चाहिए है. उत्थे लिविंग बेनीफिट्स जिहड़े हैगे आ ओह इक्वली इंपोर्टेंट आ, क्योंकि साडे जींदे जी अगर इन केस कोई मेजर क्रिटिकल इलनेस हो जाए जां कोई इदां दी प्रॉब्लम आ जाए जिहदे करके आपां काम ते नहीं जा सकते, चाहे वह इंजरी है चाहे वह सिकनेस हैगी आ, तां उस सिचुएशन दे विच जदों साडी इनकम स्टॉप हो जाती है बट साडे रेगुलर खर्चे जिहड़े हैगे आ, साडियां मॉर्गेज दी पेमेंट, साडे यूटिलिटीज दे बिल, वह सारे कंटिन्यू रहिंदे आ, उस टाइम दे उपर सानू लिविंग बेनीफिट्स दी जरूरत हुंदी आ. सो लिविंग बेनीफिट्स दे विच क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस दे नाल असीं मेजर इलनेसिस कवर कर सकदे आ, जिहदे विच 25 to 26 मेजर इलनेसिस हैगियां. इन केस इन्हां दे विचों कोई भी डिजीज डायग्नोज हुंदी आ तां इक लमसम अमाउंट सानू टैक्स फ्री कंपनी वल्लों प्रोवाइड कीती जांदी आ. एंड इहदे उपर कोई कंडीशन नहीं हैगी कि इह पैसे आपां कित्थे यूज करने आ, चाहे असीं उस पैसे नूं मॉर्गेज दीआं पेमेंट्स लई यूज करिए, चाहे अपने ट्रीटमेंट दे लई अगर सानूं कैनेडा तों बाहर जाके कितें ट्रीटमेंट करवाउणा पैंदा है उहदे लई यूज करिए. सो उहदे उपर कोई कंडीशन नहीं है एंड इह टैक्स फ्री मनी हुंदी आ. इस तों इलावा अगर इन केस कोई भी इंजरी हो जाती हैगी आ जां कोई सिकनेस हो जाती है जिहदे लई आपां महीना दो महीने पंज महीने काम ते नहीं जा सकते, उस सिचुएशन दे विच डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जिहड़ी हैगी उह सानूं प्रोटैक्ट करदी आ, क्योंकि डिसेबिलिटी इंश्योरेंस दे विच मंथली बेनीफिट प्रोवाइड किया जाता है जिहड़ा कि साडी इनकम दे बेस दे उपर आपां सिलैक्ट कर सकते हैं. सो जिन्हें भी सैल्फ इंपलॉयड कैटेगरी है जिन्हां दे काम वल्लों कोई भी कवरेज नहीं हैगी उन्हां नूं डेफिनेटली जिहड़ियां पॉलिसीज हैगियां जरूर करवा के रखनियां चाहीदियां, क्योंकि किसी भी सिचुएशन दे विच उन्हां दे कोल अपने काम वल्लों कोई प्रोटैक्शन नहीं होनी. सो अपनी कवरेज करवाउण वास्ते चाहे वह डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हैगी आ, चाहे क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस का प्लान हैगा, जां तुसीं जानना चाहुंदे आ कि इह जिहड़े प्लान हैगे आ उह मनी बैक आपां किद्दां डिजाइन करवा सकते हैं. स्पैशली क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान दे विच 100% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ 100% ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨਸ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 416-817-6500, 416-817-6500. ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਾਡਾ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈਗਾ ਮੈਕਵੀਨ ਐਂਡ ਮੇਫਿਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਪਰ, 11675 ਮੈਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6, ਟੌਪ ਚੋਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਫਿਸ. ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਅਗੇਨ
0: 416-817-6500. ਕੀ ਬਾਤ
2: ਹੈ,
0: 416-817-6500. ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਖੋਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਆਇਆ.
0: ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਹੈ?
2: ਡੈਮੇਜ ਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸੂਟ ਸੀ ਦੋ, ਹਨਾ ਉਹ ਸੀ ਟੌਪ ਆ ਉਹਦੇ ਕਟਰ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ?
0: ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਯਾਰ,
2: ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ. ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾ ਡੱਬਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ
0: ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟਮ ਨੇ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਕਸਟਮਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਟੇਪ ਟੂਪ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਰਿਜਿਨਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਰਸੂਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ.
2: ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ.
0: ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ CVSA ਦਾ.
2: ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ.
0: ਨੰਬਰ ਹੈ 1-800

0: सिंह चोटा जी नूं श्रद्धांजलि। दोषियों की
1: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा, तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992, फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल। टू लोकेशंस टू सर्व यू, 2575 स्टील एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन, 905-790-0560, 6 Marconi Court, Bolton, 905-951-9394। Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।
2: पाजी अज घरे तंदूरी बनाओ, पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना वो घरे नहीं बन पाना।
3: हाय गाइस, एंजॉय करो तंदूरी बॉयज, वेज नॉन वेज स्वाद ले तंदूरी खाने ले पहुंचो तंदूरी बॉयज।
2: सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दिया ते मसलिया ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बाता होनगिया सभ्याचार ते अमीर विरसे दिया
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7063 416-917-7763

मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता मेरी एब्सेंस विच असी देखिया टैक्स इंक्रीज हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता मैं टैक्स घट रखे बुजुर्गां लई बस सर्विस मुफ्त कीती सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लियांदा अते हजारां नौकरियां लियांदियां सब तो इंपोर्टेंट मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां हुण मैनू करप्शन नू रोकण लई तुहाडी मदद ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ

0: जल्दी पहुंचो 30 रामवेल ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ Mustang ਜਾਂ Lincoln ਜਾਂ Ford ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-302-4941।
2: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉच सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी ता हुण हर फंक्शन ले तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
3: जदो असी फूड डिलीवर करदे आ कस्टमर्स नू ते उना दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर ए हुंदे ने।
4: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। मैं तवा किचन तो कैटरिंग करवाई सी। सच मनो स्वाद ही आ गया, गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नू। इना दी सर्विस एक्सीलेंट है। ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
1: 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountnash and Bovedda intersection या विजिट करो www.tawakitchen.ca। 905-790-1699
5: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है। ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती है। पर कैनेडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200।
6: यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे। इतनियां तरकीबां लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
7: निर्बल बाबे ने कहा सी कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
8: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
9: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
10: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते। वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकदे हो 416-518-3200।
11: याद है मैं।

तो खास खूबसूरत सवेर का खूबसूरत लोग खूबसूरत गल्लां बातां शामिल हो जा रहे हैं और खूबसूरत जतन दे विच अमेरिका और कैनेडा दे विच CHLO डिजिटल AM फ्रीक्वेंसी राही अमदीप सिंह बेनीपाल मुखातिब है तुहाडा ब्रॉडकास्टिंग सैक्टर दे विच आकाशवाणी दे विच तकरीबन 1 decade प्लस एक दहाके तो वध दा समा हो चुका है और इस समय शो नूं प्रेजेंट कर रहा है पीयरसन एयरपोर्ट दे ट्रैक 6 जिथे वेस्ट जेट लैंड कर चुके है यानी कि वेस्ट तो लोग आ चुके ने ते अज दे शो दे विच तुसीं साडे नाल 401 मूविंग वेल मैजिक देख रहे हो सामने हो सामने ही डेरी रोड बिजी नज़र आ रहा है मैनू ते नाल दी नाल ट्रैफिक दे विच तुसीं अगर हो किते स्टक तां तुसीं कोई गल नहीं साडी गलबात नूं सुणदे सुणदे पता ही नहीं लगना कित्थों कित्थे पहुँच गए और ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते अराउंड क्लोज टू 15 years इन ब्रॉडकास्टिंग बहुत सारे लोग इन्हें ही सालों तो जुड़े ने 9-13 स्टूडीज जे घड़ियां दे उत्ते कि जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतजार है भूखे को रोटी का बेकार को रोजी का इंतजार है और इसे इंतजार दे विच सानू शामिल करदे हो अपना कीमती समा साडे नाल शेयर करदे हो आई विल एप्रीशिएट ऑलवेज एंटायर ऑफ माई लाइफ कि मेरे नाल तुसीं इन्ना समा स्पेंड किया तो चलिए फिर एक बार उस सफर दे वल जो बहुत खूबसूरत पर तुहाडे साथ दे नाल जिथे चलेगा चलूंगी नाल तेरे टिकटां दो लै ली ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਹੈ 905-673-3337 9053-3337 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ

0: हाँ वीर रणवीर, किधर फाइला चक्की फिरदा सवेरे सवेरे?
1: ओ पाजी, मोर्गेज लई महीना हो गया, एक दफ्तर तो दूजे दफ्तर चक्कर काटदे होए। यार आ किन्ने सवाल जवाब करदे ने मोर्गेज वाले।
0: देख भाई, जे तू लेना मोर्गेज या लोन
2: ते तेरा काम 24 घंटे च करनगे मिस्टर संधू।
1: अच्छा जी।
3: आहो जी, नीड प्राइवेट मोर्गेज एंड लोन्स? देन कॉल मिस्टर संधू एट 9056712000। नो क्वेश्चंस, नो क्रेडिट चेक, लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स। नंबर रखो याद, 905-671-2000, 9056712000। Mr. Sandhu.
4: जे टाइम दी सेविंग करना चाहते हो तो पहुंचो ऑल ट्रक ल्यूब एंड वॉश लिमिटेड, जिथे तुसी ट्रक वॉश, ट्रक ऑयल चेंज ते रिपेयर एक ही रूफ थले करा सकते हो। इत्थे बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स चल रहे ने, जिवें ऑयल चेंज नाल ट्रक वॉश सिर्फ $45, तुसी कैट दीआं बैटरीआं विद इंस्टॉलेशन चेंज करा सकते हो एट $850, सारीआं रियर ड्रम and rear brake change at $750, and AC recharge is at just $180. So reach out to them, call at 905-452-9955. Inada address is 71 Stafford Drive, Brampton. They right now a hiring bhi kar rahe ne, je tanu truck mechanic da koi experience hai, you can call them. Their number is 905-452-9955.
5: Hello bro, kithe hai tu?
6: Main client nu milne ja rahe ha, soch rahe si Tim Hortons ch baith jaiye।
5: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया, हुन तक क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनी चाहिए ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना, प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलती है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एम्बियंस, बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जाती है ते खाना भी बहुत बढ़िया।
6: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
5: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। कोई कॉल करो 905-451-2600, 905-451-2600।

0: Sumner Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

0: Brampton, या फिर तीजी लोकेशन 9985 MacWin Drive Unit 9 Brampton, Indian Fruitland. ते हुन चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton. वदिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900.
1: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहियां ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं। वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
3: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों, वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं 2014 तो 2022 तक तुहानूं रिप्रेजेंट कीता। मेरी एबसेंस विच असीं देखिया टैक्स इंक्रीज, हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नूं अनदेखिया कीता। जदों मैं तुहानूं रिप्रेजेंट कीता, मैं टैक्स घट रखे, बुजुर्गां लई बस सर्विस मुफ्त कीती, सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लिआंदा अते हजारां नौकरियां लिआंदियां। सब तों इंपोर्टेंट, मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ।
4: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ।
0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केतरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
5: आज खुश तो बात होगी
6: ओ ता होना ही है जो तो टिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे ऐ नकदा बनदा ही है।
5: हां मेरे पास बिल्ले गए हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है,
6: साडे कोल बॉलीवुड मूवीज ने, टीवी शोज, वेब सीरीज, हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नु वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है। ते नाले टिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है, ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा,
7: चल क्या रहे हो पर
6: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
6: पर टिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ, एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां tillovideo.com। होर कोई सेवा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165।
1: जिंदगी हैरानियां नाल भरी हुई है पर तुहाडे परिवारां दा फ्यूचर उन्हां विच्चों एक नहीं होना चाहिए। प्लैनेट इंश्योरेंस तो कीती हुई लाइफ इंश्योरेंस नाल तुसी अपनी लाइफ दी सारियां इंपोर्टेंट चीज़ां नूं प्रोटेक्ट कर सकते हो। ते साडे प्लान अफोर्डेबल ते फ्लैक्सीबल भी ने ते असीं उन्हां नूं डिजाइन करदे हां तुहाडी नीड दे हिसाब दे नाल टू गिव यू दैट पीस ऑफ माइंड। ते तुसी कॉल करना है मैनूं विधि छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस ते मेरा नंबर है 416-524-3535 416-524-3535।
2: मैं बलजिंदर सिंह नहल अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है। सड़कां तो पार्कां तक ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक क्राइम तो करप्शन तक चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनदा है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल सिटी कौंसलर कैंडिडेट वार्ड 9 and 10
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कंपनी ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
4: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
5: Punjabi Versa!

What a song, man. Beauty. प्यार वाला सॉन्ग, मोहब्बत के लिए ये सॉन्ग आपके लिए, क्योंकि इस गीत में फिर भाईजान बहुत प्यार प्यार और इत्तफाक है। ऐसे गीत सुनने को दिल रोज

0: 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
2: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
1: इंडिया दी टिकटां चाहिदियां सी।
2: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटां ले लो। इंडिया किथे जाना?
1: चार टिकटां दिल्ली दियां ते दो अमृतसर दियां। मिल जानगियां?
2: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो तां साडी स्पेशलिटी है। बस दसो कि टिकटां कदों दियां चाहिदियां ने। ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
1: भरोसेमंद सर्विस ते सब तों वधिया रेट्स लई इक्को इक नाम कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: 32-55-80
4: ते 98
3: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
4: हो काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828 905-450-2828।

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।

0: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
0: भैया ते कारा दे नाल नाल बसा ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905-874-98-78।
2: चाहे तुहाडी गड्डी दी इंश्योरेंस होवे, घर दी इंश्योरेंस होवे, जां तुहाडा अपना बिजनेस होवे, सही कवरेज अते सही कीमत बहुत जरूरी है। कई बार असी सिर्फ ए देखते हां कि प्रीमियम किन्ना है, पर ए नहीं देखते कि पॉलिसी विच कवरेज की मिल रही है। इसलिए इंश्योरेंस लैन जां रिन्यूअल करवाउण तों पहला अपनी पॉलिसी दा रिव्यू जरूर करवाओ। मैं हाँ इंश्योरेंस एडवाइजर जगजीत महल। ऑटो, होम, कमर्शियल इंश्योरेंस बारे जानकारी जा कोट ले आज ही संपर्क करो 647-88-20 647-627-8820।

झूठियां तारीफां करे कमी ना दसे वो बंदे खतरनाक होंगे जेडे मुंह ते जी जी करी जाण तुहाडी माड़ी गल नूं वी कहण नहीं ठीक ही उन्हों तो कहिंदे बचना चाहिए सियाणे कहिंदे

0: हिल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दुशहरे पर दे रहे हैं बाय वन गेट वन देसी घी की जलेबी स्पेशल केटरिंग ऑफर एट 10.99 पर पर्सन स्वीट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99 पर पाउंड सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट सर्विंग यू फ्रॉम 3 लोकेशन गार्डन लूप ट्रेल फेंडर वे फाइनेंशियल ड्राइव इन ब्रैम्पटन
1: कैनेडा दे स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
2: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
3: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
4: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
5: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानूं सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
3: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
6: सिटी ऑफ ब्रैम्पटन दे वार्ड नंबर 1 ते 5 विचों काउंसलर वास्ते उम्मीदवार ने तेजेंद्र सिंह पिंडर नु वोट पाके कामयाब करो पिछले 22 वर्षों तो कम्युनिटी दे विच बचे रहे ने ते कम्युनिटी दे काम बड़ी सहजता नाल कर रहे ने रियल एक्सपीरियंस रियल एक्शन योर वॉइस योर सिटी अपर ब्रैम्पटन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जोनिंग बायला एक्सपीरियंस दी महारत रखदे ने तेजेंद्र सिंह पिंडर नु एडवांस पोलिंग ते 26 अक्टूबर नु वोट पाके कामयाब करो सिटी काउंसलर वास्ते वार्ड नंबर 1 ते 5 विचों चोण लड़ रहे ने ब्रैम्पटन वार्ड नंबर 3 ते 4 विचों रीजनल काउंसलर वास्ते चोण लड़ रहे ने संदीप गोयल जगरामा वाले रूपरेखा इस प्रकार है क्वीन तो साउथ नू डिक्सी रोड तो वेस्ट नू मिसिसागा रोड तक थले 407 पैंदा ए सारा एरिया वार्ड नंबर 3 ते 4 विच पैंदा है तुसी संदीप गोयल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਹੋਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ

दशहरा स्पेशल ऑफर देसी घ्यो दी फ्रेश जलेबी बाय वन गेट वन फ्री केटिंग शुरू होगी 10.99 पर पर्सन स्वीट स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99 पर बॉन्ड डाइनिंग टेक आउट सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट फनुतीन लोकेशन तो अपनी बेहतरीन सेवा प्रदान कर देनी गार्डन ग्रुप फ्री वेंडर वे फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन

सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एनब्रिज गैस.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।